0: और 1,73,000 से ज़ायद को ज़ख्मी कर चुका है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इसके अलावा गज़ा का बड़ा हिस्सा खंडर बन चुका है और वहाँ की पूरी आबादी बेघर हो चुकी है।
1: इसराइल ने मकबूजा मगरब किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तोसी के लिए 8.5 अरब शेकल तकरीबन 2.3 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के एक फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइली ज़राए ब्लाग के मुताबिक इसराइल ने मकबूजा मगरब किनारे में तकरीबन 2.3 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के और 12,000 नई रिहायशी इमारतों की तमीर और बड़े पैमाने के बुनियादी शहरी ढांचे के मनसूबे के फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत किए हैं। इसराइल के चैनल 14 ने इस माहदे को गैर कानूनी बस्तियों की तोसी और खत्ते का नक्शा बदलने की जेरे मकसद उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम करार दिया है। इस मुआहदे पर एक सरकारी तकरीब के दौरान दस्तखत किए गए। तकरीब में वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू, वजीर खजाना बेजाल अल स्मोटरिच, इसराइल लैंड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल यहूदा एलायो और शुमाल मगरबी किनारे में मुतद्दद इसराइली बस्तियों की निगरानी करने वाली शोमरवान रीजनल कौंसिल के सरबराह यूसी डागन ने शिरकत की। खबर के मुताबिक ये मुआहदा खित्ते में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी के अमल और इनके बुनियादी ढांचे की जदीदकारी को नुमाया रफ्तार फ्राहम करेगा। इसराइल इंसदाद आबादकारी निगरानी तंजीम पीस नाव के मुताबिक मकबूजा मशरक अलकुद्स के इसराइली बस्तियों में तकरीबन 2,50,000 अफराद मुकीम हैं, जबकि मकबूजा मगरब किनारे के बस्तियों में भी तकरीबन 5,00,000 इसराइली आबादकार मौजूद हैं, जिन्हें बैन अल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी आबादकार समझा जाता है।
0: सदर ट्रंप के माहदा मुमकिन है का बयान जारी करने के बाद अमरीका ने ईरानी दिफाई निज़ाम पर हमला कर दिया है। अमरीका ने ईरानी साहिली दिफा के खिलाफ 5 घंटे का फौजी ऑपरेशन शुरू किया, जिससे मशरक़ वस्ती में तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरानी बहरी सलाहियतों, साहिली दिफाई निज़ाम और फाल मिज़ाइल और ड्रोन अड्डों को गाइडेड गोला बारूद के साथ निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने कहा है कि बराह रास्त फौजी तसादुम दोबारा शुरू होने के बाद ऊपर तले 3 रातों तक की जाने वाली गोलाबारी का मकसद ईरान की आबनाए हुरमुज तक स्ट्रेटजिक रसाई को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करना था। एक अलग खबर में ईरानी ज़राए अबलाग ने कहा है कि पासदारा ने इनकलाब ने बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा है कि तहरान के साथ सफारती माहदा अब भी मुमकिन है।
1: लुबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने तेल अवीव और बेरूत के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे की रोजाना की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में जनूबी लुबनान में घरों को मुसमार और नजरे आतिश कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने हादसा कस्बे के जनूबी महलों में घरों को निशाना बनाया है। इसराइली अफवाज ने इतवार के रोज जनूबी शहर बिनते जबील में एक बड़ा धमाका किया। फरवरी में इसराइल और अमरीका की जानब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने और मुल्क के रहबरे आला अली खामनाई को कत्ल करने के नतीजे में तेहरान नवाज शिया ग्रुप हजबुल्ला ने इसराइली ठिकानों पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लुबनान 2 मार्च को मशरक वस्ती की जंग में खिंचा चला आया। यह हालिया पेशरफ्त नवंबर 2024 से नाफजुल अमल जंगबंदी और अमरीकी तआवुन से 26 जून 2026 को दस्तखत किए गए फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद हुई है, जिसके तहत मकबूजा तमाम लुबनानी इलाकों से इसराइल के बतदरीज इनखला की बात कही गई है। एक लुबनानी फौजी एहलकार ने AFP को बताया है कि एक अमरीकी फौजी वफद ने बैरूत में लुबनानी फौज के हुकाम से मुलाकात की ताकि मकबूजा इलाकों में वाकई एक पायलट जोन से इसराइली इनखला के अमल के नफाज पर बातचीत की जा सके।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान के जजीरा किश्म के शुमाल में एक बहरी तसादुम में शदीद नुकसान उठाने वाले बल्क कार्गो जहाज से 23 मल्लाहों को बहाफाजत निकाल लिया गया है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज बरोज मंगल एक बहरी तसादुम के नतीजे में 23 रुकनी गैर मुल्की अमले वाले कार्गो बहरी जहाज के दरमियानी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और जहाज में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज के कप्तान ने अमले को फौरी तौर पर जहाज खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद तमाम मल्लाहों को कामयाबी से बचाकर जजीरा किश्म मुंतकिल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक जुनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास के हुकाम को मंगल को अल सुबह इस तसादुम की इत्तला मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर बहरी इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतासर जहाज की मदद और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सुबह हुरमुजगान के मैरी टाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के ताउन से एक पायलट कश्ती और एक टक कश्ती रवाना कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात से मालूम होता है कि बल्क कार्गो जहाज समंदर में एक दूसरे जहाज से टकरा गया था, तहम हुकाम अभी तक हादसे की असल वजह का तायुन नहीं।

0: और लीजिए सामिन, अब एक गीत आपकी समातों की नजर करते हैं। गीत के बोल हैं ख्योर पिचक और गाया है यशार ने।
1: Bir gün artı bir gün daha, bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı.

मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो पाए हैं। इस तनाजुर में एथोपिया का असल मसला सिर्फ सिक्योरिटी खतरात की तादाद में इजाफा नहीं है बल्कि ये है कि रियासती सलाहियतों का बयाकवा कई मुख्तलिफ महाजों पर इम्तहान लिया जा रहा है। अगरचे फौजी तरीके कलील मुद्दत में मखसूस इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में जब तक एक जाम सियासी तस्फीये का तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया जाता तब तक अदम इस्तेहकाम का मौजूदा चक्कर जारी रहने का कवी इम्कान है। ख़ास तौर पर मुआशी मुश्किलात, अवाम की बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई अवामी बेचैनी ने इन सिक्योरिटी मसाइल के सियासी पहलू को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। नतीजे के तौर पर अगरचे यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि एथोपिया मुस्तकबिल करीब में एक मुकम्मल तौर पर तबाहार रियासत में तब्दील हो जाएगा, लेकिन यह वाज़ह है कि मुल्क अंदरूनी बगावतों, नाजुक सियासी तवाज़ुन और इलाकाई मुसाबिकत की वजह से एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अदिस अबाबा की इंतजामिया के सामने बुनियादी इंतखाब यह है कि आया वो सिक्योरिटी पर मबनी सख्त पॉलिसियों को जारी रखे या मुख्तलिफ समाजी और सियासी क़ुव्वतों को शामिल करते हुए एक नए कौमी मुफाहिमत की बुनियाद रखे। हमने इस मौजू पर वर्सैम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजीओलू का तज़िया पेश किया। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शोरश ज़दा अफ्रीका।

सामिन, अगर एक बूढ़ा अमेरिकी केमिकल इंजीनियर अपने नौजायदा पोते का डायपर बदलते हुए थक जाए और उसका हल तलाश करे तो क्या होगा? इसका जवाब होगा कि हाँ, अगर वह दुनिया की सबसे मशहूर हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, तो वो इस मसले को हल करने के लिए अपने पूरे अमले को मुतहरक कर सकते हैं। हकीकत के तौर पर यह हुआ भी, और एक ऐसी प्रोडक्ट सामने आई जिसने मैन्युफैक्चरर्स को उस दिन से अरबों डॉलर मुनाफा देना शुरू कर दिया। आजकल हम इस प्रोडक्ट को डिस्पोजेबल डायपर्स कहते हैं। विक्टर मिल्स एक केमिकल इंजीनियर जो 1897 में अमेरिका में पैदा हुए, दुनिया के सबसे मशहूर हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करते थे। वो शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी थी। मिल्स की बेटी काम करती थी, लिहाजा अवाखिर हफ्ता वो अपने नौजायदा पोते की देखभाल करते थे। इस वजह से उस दिन के वक्त अपने पोते का डायपर तब्दील करना पड़ता था, लेकिन वो देखभाल के इस हिस्से से खुश नहीं थे। मिल्स ने अपनी परेशानी का अपने साथियों के साथ जिक्र किया। अगरचे इत्तफाक से एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके जहन में आया जिसे एक घरेलू खातून ने 10 साल पहले मुतारिफ करवाया था, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसने उसे मुस्तरद कर दिया। 1946 में घरेलू खातून मैरियन डानोवन ने पहला वाटर प्रूफ डायपर ईजाद किया और उसे मिल्स ने बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए काम करने वाली कंपनी को तजवीज़ किया, लेकिन कंपनी के मालकान इस ख्याल में सरमायाकारी नहीं करना चाहते थे। एक और डिस्पोजेबल डायपर डिज़ाइन वैलरी हंटर गोर्डन ने सोचा था और उसे 1948 में पेटेंट किया गया था, लेकिन यह भी बड़े पैमाने पर तैयार नहीं हो पाया। उन सालों में अमेरिका में काम करने वाली ख्वातीन की तादाद कम होती थी और घरेलू ख्वातीन सूती कपड़े से बने लंगोट को ही तरजीह देती थीं, जिन्हें हर बार धोया और खुश्क किया जाता था। दूसरी जंग अजीम के साथ ही ख्वातीन मुलाजमीन अमेरिकी जंगी सनत का हिस्सा बन गई, और जंग के बाद मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में अचानक इजाफे ने, जिन्हें तारीख में बेबी बूमर्स कहा जाता है, एक नई ज़रूरत पैदा कर दी। विक्टर मिल्स का हदफ ये सार्फीन था, वो ख्वातीन जो काम करती हैं और उनके बहुत से बच्चे भी हैं। डिस्पोजेबल डायपर प्रोजेक्ट के लिए अपनी तहकीकी टीम को मुतहरक करते हुए मिल्स ने बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की और इस बार इस कंपनी को इस प्रोडक्ट में सरमायाकारी के लिए कायल कर लिया। कागज़ से बने इन बच्चों के लंगोट ने शदीद तशहीरी मुहिम के दौरान से खसूसी तवज्जो मबजूल करवाई। पहले दिन से नौजवान और काम करने वाली माओं ने तकरीबन सुपरमार्केट की शेल्फों को लूट लिया, यहाँ तक कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव जिनको प्रोडक्ट के बारे

0: में शकूक व शुबहात थे, उन्होंने मिल्स की कामयाबी को सराहा, लेकिन चंद महीनों के बाद फरोख्त में संगीन कमी आना शुरू हो गई, जिससे यह जाहिर होता था कि उनसे कहीं गलती हुई है। उन सालों में कंपनी की इंतजामिया ने मुल्क के मशहूर माहिर नफ्सियात और ब्रांड मैनेजर्स में से एक विलियम कैसन की मदद ली, और कैसन की तहकीकात के नतीजे में उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने इश्तिहारी मुहिम में नारे में गलती की थी, ना कि मसनूआत में। तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल किया गया नारा आरामदेह और खुश माँ का रद्द अमल हुआ, जिसमें डिस्पोजेबल डायपर इस्तेमाल करने वाली काम करने वाली खवातीन को खुद गर्ज माओं के तौर पर पेश किया गया, जो अपने आराम का ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों को नरम रुई के लंगोट के बजाय कागज़ से ढांपती हैं। इस सूरत हाल ने काम करने वाली माओं में एहसास जुर्म पैदा किया और फरोख्त में तेज़ी से कमी आई। कंपनी ने फौरी तौर पर एक नई मुहिम शुरू की और अपने नारे को आपके बच्चे के लिए आराम के लिए के अल्फाज के साथ तजदीद किया। एक नए नारे और इश्तिहारी मुहिम ने डिस्पोजेबल डायपर की तकदीर बदल दी और अमरीकी खवातीन ने शेल्फ दोबारा खाली करना शुरू कर दी। डिस्पोजेबल डायपर यूरोपीय ममालिक में खवातीन की पहली पसंद बन गए। सामीन, एक ऐसी प्रोडक्ट की कामयाबी के पीछे जिस पर हम सब बेबी डायपर के तौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जिसने अपने आगाज से ही अरबों डॉलर की मार्केट को अपनी तरफ रागिब किया, इस मसले का हल तलाश करने में मुजीद दादा की जिद थी, जो अपने पोते का लंगोट बदलते हुए थक गया था। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: इजादा।